अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
1: आशना अपनी हकीकत से हो ऐ दहकान जरा, दाना तू खेती भी तू बारां भी हासिल भी तू। आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू रह रो भी तू रहबर भी तू मंजिल भी तू।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली की हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

کچھ بھی نہیں حسین کی نسبت کو چھوڑ کر, کچھ بھی

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

कुछ भी नहीं हुसैन की निस्बत को छोड़कर, कुछ भी नहीं हुसैन की निस्बत को छोड़कर।

बेटे हैं ये।

सच बात तो यह के हक बातिल के नाम पर।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।
2: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
3: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हा, 2315525786।
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: ऐशा।
1: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: माहिदे लाइ 60 ॾींहनि जो रोड मैप मंज़ूर। टेक्निकल ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो बरगा स्टॉक रिसोर्ट में ई जारी रहंदो। निगरानीअ लाइ आला सतह कमेटी जे क़याम ते बि इतफ़ाक़। इस्लामाबाद मफ़ामत यादाश नामे तहत स्विट्ज़रलैंड में ईरान अमरीका ॻाल्हियुनि जो पहिरियों दौर मुकमल। कतर ऐं पाकिस्तान जो गडियल बदरनामो जारी। परडेही खाते मूजिब आबनाए हुरमस में जहाज़नि जी अजमिन बरकरार रखण ऐं कंहिं बि क़िस्म जी ग़लति फहमी खां बचण लाइ हॉट लाइन क़ाइम। लबनान जंगबंदी ते अमल दरामद लाइ डी कंफ्लेक्शन सेल थियण ते इतफ़ाक़। अकेडमी प्रोग्राम पाबंदियुनि ऐं तकरारनि जे हल लाइ धारदार वर्किंग ग्रुप्स क़ाइम। ऐं टियाकरे कंदड़ मुल्क ॻाल्हियूं तामीरी माहौल में अॻिते वधाइण लाइ कोशिशूं जारी रखंदा।

घारो में पुलिस अहलकारनि जी शहादत में मलिस हिकु ॾुहारी मुबैना मुक़ाबले में मारिजी वियो। घारे थाणे जे हंधि बापला रोड ते पुलिस ऐं ॾुहारनि में मुबैना मुक़ाबलो थी पियो। फायरिंग जी ॾेवट में हिकु हथियारबंद मारिजी वियो, टे फरार थी विया। पुलिस मौजिब मारिजी कल ॾुहारी घारो में पुलिस अहलकारनि जी शहादत में मलिस हो। तन सुञाणप ओस्ता मोहम्मद वासी हज़ूर बख़्श अबड़ो तौर थी आहे। मुक़ाबले में मारिजी वियल ॾुहारी जो लाश हेल्थ सेंटर घारो मुंतकिल कयो वियो। फरार थी वियल ॾुहारनि जी गिरफ़्तारीअ लाइ पुलिस जी नाकाबंदी जारी। शहीद पुलिस अहलकार अकबर मरी ऐं मजीद मरी टंडो अलयार में सरकारी एज़ाज़ सां जनाज़े नमाज़ बाद मड़ मिटी माओ हवाले कयो वियो।

ॾखण भर सां अलम लॻाइण दौरान करंट लॻण सां कोतन जो अंग वधी 8 थी वियो। 15 ॼणा ज़ख़्मी। गोठ बुडू में बिजली जे हाई वोल्टेज तार मां करंट लॻण सां दीन मोहम्मद लोलाई, सनत भाउ हिदायतुल्ला लोलाई, शफ़ीक अमन लोलाई, हसन सोलंगी, वहीद लोलाई, खालिद लोलाई, ज़ाहिद लोलाई फौत थी विया। इलाक़े वासनि मूजिबि अदादारनि पारां अलम पाक लॻाइण दौरान हथनि मां निकिरी वञण सां बिजली जे तारनि में किरी पियो, जंहिं सां वाक़ियो पेश आयो। मोरो वेझो टूर प्लाज़ा दर्श शाख वटां हिकिड़े जो लाश इतलाह ते पुलिस पहुची लाश सिविल अस्पताल मोरो मुंतकिल करे छॾियो। पुलिस मौजूदु पहुती सुञाणप दर्श घोट जी आशिक हुसैन अबड़ो तौर थी आहे। वारसनि जो चवण आहे त ख़त शिवा त नौजवान खे क़तल कयो वियो आहे। वाकिए जी जांच कयो।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, जीए एफएम 90.4।
2: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
3: तपोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन एक एडो एफएम रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
3: आई। हां गोठन शहरन ए परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो जीए एफएम मातली बदीन।
2: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार हलाण लाए
3: असान जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 0331252576।
3: जी हां 2315525786।
2: जीए एफएम रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवांजी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: कारोबार की तरक्की लाए सोचे रहा आयो
3: तो पोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
3: ऐं हाँ गोठन शहरन ऐं परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पो हाने खणो फोन ऐं पेंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 0331252578 6।
3: जी हाँ 2131525786
2: GAFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM
2: 90.4 कारोबार की तरक्की लाए सोचे रहा आयो
3: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
3: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
2: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलाइण लाए
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 0331252578
3: जी हाँ 2315525786
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

अमरीका ऐं ईरान विच में हतमी मुआदे लाइ 60 ॾींहनि जो रोड मैप मंज़ूर। टेक्निकल ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो बर्गन स्टॉक रिज़र्व में जारी रहंदो। निगरानी लाइ आला सतह कमेटी जे क़याम ते बेतफ़ाक़। इस्लामाबाद मफ़ामती यादाशनामे तहत स्विट्ज़रलैंड में ईरान अमरीका ॻाल्हियुनि जो पहिरियों दौर मुकमल। कतर ऐं पाकिस्तान जो गडि॒यल पदरनामो जारी। परडे॒ही खाते मूजिबि आबना होरबस में जहाज़नि जे अचवञ बेकार रखण ऐं कंहिं बि क़िस्म जी ग़लति फ़हमी खां बचण लाइ हॉट लाइन क़ाइम। लबनान जंगबंदी ते अमल दरामद लाइ डी कंफ्लेक्शन सेल थियण ते बेतफ़ाक़। अकेडमी प्रोग्राम पाबंदनि तकरारनि जे हल लाइ धारदार वर्किंग ग्रुप क़ाइम। टियाकड़े कंदड़ मुल्क ॻाल्हियूं तामीरी माहौल में अॻिते वधाइण लाइ कोशिशूं जारी रखंदा। ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास इराक़ी चयो आहे पाकिस्तान ऐं कतर जे टियाकड़े सबबि लबनान जंग जे ख़ात्मे में वॾी अॻभराई थी आहे। ईरान ते लॻायल तेल ऐं पेट्रो केमिकल जे बरामद ते लॻायल पाबंदियूं ख़तम थी वियूं आहिनि। आबना हुरमज़ में सामूरी जहाज़नि चिरपुर ते लॻायल पाबंदी ख़तम करण समेत कुझु मंझंद असासा बि बहाल थी विया आहिनि। ईरानी परडे॒ही खाते ते तर्जुमान इस्माइल बाक़ाई चयो आहे मफ़ामती यादाश असरादे नमूने लागू करण लाइ टेक्निकल टीमूं अॼु खां पंहिंजो कम जारी रखंदियूं। अमले ऐं टेक्निकल पासनि खां कम अञा बाक़ी आहे। अमरीकी नायब सदर जेडी विल्स चयो आहे त समूरी दुनिया में पाकिस्तान जी साराह थी रही आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ फील्ड मार्शल आसम मुनीर बहितरीन कम कयो। मुंहिंजी ज़िंदगी में ॿ अहम तरीन शख़्सियतूं हिकु पाकिस्तानी ऐं ॿी भारतीय आहे। भारतीय शख़्सियत मुंहिंजी घरवारी ऐं पाकिस्तानी शख़्सियत फील्ड मार्शल आज़म मुनीर आहे। सच इहो आहे त गुज़िरियल टिनि महीननि में जेतिरो फील्ड मार्शल आसम मुनीर सां राब्तो रहियो एतिरो कंहिं ॿिए सां राब्तो ऐं ॻाल्हि ॿोल नाहे थी। फील्ड मार्शल आसम मुनीर बिना कंहिं शक जे हिकु अज़ीम सिपह सालार आहे, पर मूंखे लॻे थो त हुन सां गॾु हिन पाण खे माहिर सफ़ारतकार पिणु साबित कयो आहे।

अमरीकी सदर जे ईरान के बीहर चमकी डोनाल्ड ट्रंप चया ईरान के लबनान में पंजी प्रॉक्सीज के दुखायों पैदा करण का बिना देर रोकण घुर्जे। ईरान ये न कह तो खेस गुजरियल हफ्ते की बीहर पूरी ताकत से निशानो बढ़ाईदी। दखण भरसा अलम लगाने दौरान करंट लगने सबब फौतन जो अंग वधी अठ थी वो 15 जणा जख्मी। गोठ बुढ़ो में बिजली करंट लगने सबब दीन मोहम्मद लोलाई, सनत भाव हिदायतुल्ला लोलाई, शफीक अहमद लोलाई, हसन सोलंगी, वहीद लोलाई, खालिद लोलाई और जाहिद लोलाई फौत थी व्या। इलाके वासन मौजूद बड़ोदार पारा अलम पाक लगाने दौरान हथन में निकली वन सबब बिजली के तार मत किरी पो जै सबब ही वाक्य पेश आयो। कोरबा में पंज डी कतल थे आमना खासकर के कातिल की गिरफ्तारी लाए वारसन पारा भुख हड़ताल कैंप कायम। वारसन जो तो कातिल सरियाम घुमी रहा है खामोश रहने लाए धमकाए रहा है। नोटिस वी तहफुज फराम किया वे।

0: ٹکر میں پولیس جا دھار دھار مقابلہ بدوہاری زخمی حالت میں گرفتار پولیس موجب آباد تھانے جد جعفر آباد لنک روڈ وٹ مقابلے میں نصر اللہ میرانی کے زخمی حالت میں گرفتار کیا ویو اسلام آباد ٹکری وٹ مقابلے بعد ایک دوہاری کے زخمی حالت میں گرفتار کیا ویو اسنو سنجانب یاسین میرانی طور تھیا ہے ऐं कनकोट में पुलिस जे मुबैना मुक़ाबिलो क़तल केस में बदोहारी ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार करण जी दावा पुलिस मौजिब फायरिंग ॾे वठि में ग़ुलाम रसूल ममदाणी ऐं हसनैन बंगवार खे ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार कयो वियो आहे। जवाबदारनि हिकु ॾींहुं अॻु फुर दौरान वापारी खे क़तल करण जो एतिराफ़ पिण कयो आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GAFM 90.4।
4: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
5: तो पोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
5: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलायण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252576।
5: जी हाँ 2315525786।
4: GAFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज, GFM 90.4।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
4: त पोए GFM 90.4 मातली बदी निक एड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
4: आई। हां गोठन शहरन ए परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार हलाण लाए
4: असान जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हाँ, बुड़ी 361 525 786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: पहुंची।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: एटमी प्रोग्राम पाबंदी ने तकरार के हल के लिए धारधार वर्किंग ग्रुप्स कायम कया व्या। प्रदेश खाते पारा जारी कल बयान में चयो है त डीकन्फेक्शन सेल में लबनान ए सालिस मुल्क शामिल हुंदा। चाकरी कंदर मुल्क गालियों तामीरी माहौल में अगते वधाने के लिए कोशिशों जारी रखंदा। टेक्निकल सतह से गालियों बर्गस्टाक रिजोर्ट्स में जारी रहंदियों।

ईरान जी नाकाबंदी खत्म करे कुछ मुंजमद असासा बहाल कया विया आहिनि। पाकिस्तान ऐं कतर जी टाकड़ी में लबनान जंग जे खात्मे जे लाइ बि अहम अगहराई थी आहे। ईरानी परदेही वज़ीर अब्बास अराग़ची चवाए त तेल ऐं पेट्रो केम जी बरामद तां बि पाबंदियूं हटाई वियूं आहिनि। ईरान जी नए से तामीर ऐं तरक़ीअ जो नओं मनसूबो बि शुरू कयो वियो आहे। अमेरिकी सदर जी ईरान खे ॿीहर धमकी। ईरानी प्रॉक्सीज़ खे छिकतान वधाइण खां रोकण जो मुतालबो। डोनाल्ड ट्रंप चवाए त ईरान संदसि ॻाल्हि न मञी त खेसि ॿीहर निशानो बणाए वेंदो। ईरानी क़यादत अमेरिकी सदर ट्रंप जी धमकियुनि खे रद्द करे छॾियो।

0: ऐं ॾखण वेझो अलम पाक बुलंद करण दौरान करंट लॻण सबबि फोत थियल 8 ॼणनि जी जनाज़े निमाज़ अदा। ॻोठ बडो में दरगाह नूरशाह ते अलम पाक बुलंद करण दौरान अरबाब हसन ऐं ॿिया फोत थिया हुआ। जनाज़े निमाज़ में SSP शिकारपुर ऐं शिया अॻवान समेत सियासी समाज जे अॻवान शिरकत कई। माहौल सोगवार।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहां वहां। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GAFM 90.4।
4: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
5: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331258625।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: Mehran ki sakafat se gunda hua. आवाज की डोर से बंधा हुआ
4: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
5: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे
4: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
2: तो पोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
1: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
2: ऐं हां गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
1: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 03125252786
2: जी हां 2131525786
1: GAFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।
3: आया दीन मारू विसारियो वतन के अलाए छो अपन अलाए छो।

अलाए छो बेड़ी चन न पारियो सुख न थे आया कीन।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

अमरीका ईरान विच मेहतबी मुआहदे लाइ सटरीन जो रोडमेप मंजूर। लबनान जंगबंदी ते अमल दरामद लाइ डीकंप्रेशन सेल खाइण ते इतफाक। अमरीका ईरान विच में इस्लामाबाद मफामती यादाश्तनामे जे तहत गालियुनि जो सिलसिलो जारी रखण जो फैसलो। निगरानी लाइ आला सतह कमेटी जे क़याम ते इतफाक। स्विट्ज़रलैंड में थियल ईरान अमरीका गालियुनि जो गडियल पदरनामो जारी। अपने हुरबस में जहाज़नि जे अचवञ बहाल रखण ऐं ग़लति फहमीअ खां बचण लाइ हॉटलाइन बि क़ाइम। एटमी प्रोग्राम पाबंदियुनि ऐं तकरारनि जे हल लाइ धारदार वर्किंग ग्रुप्स क़ाइम कया विया। परडे खाते पारां जारी कयल बयान में चयो वियो आहे त डी कंस्ट्रक्शन सेल में लबनान ऐं सालस मुल्क शामिल हूंदा। जागिरे कंदड़ मुल्क गाॾियूं तामीरी माहौल में अॻिते वधाइण लाइ कोशिशूं जारी रखंदा। टेक्निकल सतह ते गाॾियूं बर्गन स्टॉक रिज़ोर्ट में जारी रहंदियूं।

ईरान जी नाकाबंदी खत्म करे कुछ मंजमन असासा जारी कया व्या आहिनि। पाकिस्तान कतर जे टाकरे में लबनान जंग जे खात्मे लाइ अहम अगबराई थी। वज़ीर अब्बास राख़्ती चयो आहे त तेल ऐं पेट्रोल खयम जी बरामद थियल पाबंदियूं हटाए वियूं आहिनि। ईरान जे नए सिर ताबीर ऐं तरक़ीअ जो नओं मनसूबो बि शुरू कयो वियो आहे। अमरीकी सदर ईरान खे ॿीहर धमकी। लबनान में ईरानी प्रॉक्सीज़ खे चिकटाण वधाइण खां रोकण जो मुतालबो। डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे ईरान सां ॻाल्हि न मञी त खेसि ॿीहर निशानो बढ़ायो वेंदो। ईरानी क़यादत अमरीकी सदर ट्रम्प जी धमकियुनि खे रद्द करे छॾियो।

इर्सा में सिंध जो नुमाइंदो शफकत हुसैन बीमार हण सबब कारोबार हराइण का लाचार। इर्सा सिंध गैरहाजिरी जो फायदो वठंदे मनपसंद फैसला करण लगी। आपा शिफा से इर्सा लाइ मुतबादल प्लान न जोड़ियो। सूबे में पानी जो बहरान संगीन थी वो जरियन मूजिब इर्सा समूरन गरजाण जा नोटिस डना। सिंध में केर भी इजलास में शरीक न थो। पानी की सख्त खोट दौरान इर्सा में सिंध की गैर मौजूदगी सूबे के नुकसान पहुंचाया। इर्सा इजलास में सिंध जो आवाज न होजन सबब पानी विरस बाबत मनपसंद फैसला कया व्या। सतह से मोटरवे अथॉरिटी कायम करण की भी तजवीज। सिंध में बजट से गालाईंदे सूबाई वजीर जाम इकरामुल्ला धारे जो चयो सिंध में पानी की सख्त खोट है। पंजाब में चनाब दरिया से नए कैनाल ठाने की गाल थी रही है। सिंध हुकूमत दरिया से नव मनसूबन से मजम्मत कंदी। नेशनल हाईवे मोटरवे अथॉरिटी कायम कर सिंध के रोड्स से कम कर सके तो। सूबाई वजीर रियाज शाह शिराजी तो सूबे में पानी बहरान संगीन थी वो है। फसल पोखण लाइ पाणी ॾिनो वञे। प्याज बुट चयो त मुल्क खे गैस ऐं बिजली ॾींदड़ सिंध में ई गैस ऐं बिजली अणलभ आहे। सिंध में ज़रई पाणी जी खोट ख़तम न थी। मुख़्तलिफ़ शहरनि में फसल पाणी न मिलण सबबि सड़ण लॻा। बारा में एसयूपी जो पाणी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज रैली कढी धरणो हयो वियो। मीरपुर भठोरो में अवामी तहरीक जो पाणी कोट खिलाफ़ एहतजाज। इलाक़े जे शाखनि ऐं वाहन में पाणी छॾण ऐं फसल बचाइण जो मुतालबो। रखण वेझो आलम बुलंद करण दौरान करण लॻण सबब पहुचल अठ ॼणनि जी जनाज़ नमाज़ तदफ़ीन। जनाज़ में ज़िले आफ़ीसरनि शहरनि इलाक़े वासनि शिरकत कई। ॻोठ ॿुढो में दरगाह नूर शाह ते आलम बुलंद करण दौरान करण लॻण सबब अठ ॼणा फौत थिया हुआ। नौशोपुर जी अदालत में एनपीपी सरबराह मुर्तज़ा जतोई सां भाउ ख़िलाफ़ अठ केसनि जी ॿुधणी। मुर्तज़ा जतोई ऐं मसरूर जतोई अदालत में पेश। एटीसी जो जज मुक़रर न हुअण सबबि ॿुधणी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कई। वकीलनि जी दलीलनि बाद ॿुधणी 27 जुलाई ताईं मुल्तवी। कोरबा में 5 ॾींहं क़त्ल थियल आमना कासकेली जे कातलनि जी गिरफ़्तारी लाइ वारसनि जो एहतजाज। केस में नामज़द जवाबदार गिरफ़्तार करण जो मुतालबो। मुज़ाहिरीन मूजिब कातल सरियाम घुमी रहिया आहिनि, धमकाए रहिया आहिनि ऐं पुलिस केस में नामज़द जवाबदार गिरफ़्तार करे इंसाफ़ कयो। ऐं पन वाकिल वेझो कचे में हथियारबंद तां धनार मुबैना तौर ते अगवा। रज़ागोट थाणे जेत में माल चाढ़ींदड़ इसाक महर खे हथियारबंद अगवा करे विया। बुकी जो वारस आहे त औरत मेहू चाहे रहियो हो त खेसि हथियारबंद अगवा करे विया आहिनि। पुलिस खे इतलाउ कयो आहे खेसि बाज़ियाब करायो वञे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज, सिंध की आवाज।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GAFM 90.4।
3: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज, GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
4: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
4: आई। हाँ, गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लाइन लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हाँ, बुड़ी 331 5 7 86।
3: GFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GAFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त तहत अमेरिका ईरान विच में थियल पहिरीं आला सतही गॾिजाणी में मस्बत अगभराई थी आहे। हतमी मुआहिदे लाइ 60 ॾींहनि जे रोडमैप ते इतफ़ाक़ थियो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान ऐं अमेरिका विच में स्विट्ज़रलैंड में थियल ॻाल्हियुनि बाबति जारी बयान में चयो आहे त ॻाल्हियुनि दौरान आला सतही कमेटी ते बि इतफ़ाक़ थियो आहे, जेका सियासी निगरानी सां गॾु टेक्निकल ॻाल्हियुनि जे लाइ रस्तो हमवार कंदी। अमेरिकी ईरानी क़यादत जे तामीरी ॻाल्हियुनि ते संदन थोरायतो आहियां। तारीख़ी अमल खे अॻिते वधाइण में मदद करण ते दोस्त मुल्कनि जो बि थोरायतो आहियां। ख़ासि तौर ते कतरी क़यादत जो थोरायतो आहियां। ॻाल्हियुनि खे कामयाब करण वारनि फील्ड मार्शल आसिमुनी जे कोशिशुनि ते बि संदसि थोरायतो आहियां। फील्ड मार्शल जी कोशिश ऐं अज़म सबबि अगभराई थी आहे। नायब वज़ीर आज़म ऐं घरू वज़ीर जो बि किरदारु साराह जोॻो रहियो।

अमेरिका ऐं ईरान विच में हथबी मुआदे जे लाइ 60 ॾींहनि जो रोडमैप मंज़ूर थियण बाद टेक्निकल सतह ते ॻाल्हियूं जारी। ईरानी मीडिया मूजिबि ॿिन्ही मुल्कनि विच में टेक्निकल सतह ते ॻाल्हियूं जारी रहंदियूं। ॿिन्ही मुल्कनि जा आला सतही वफ़द ॻाल्हियुनि जो हिसो हूंदा। ईरान जो आला सतही वफ़द रोडमैप ते इतफ़ाक़ बाद स्विट्ज़रलैंड खां वापसि ॾेह रवानो। ईरानी परदेह वज़ीर अब्बास अराग़ची चयो आहे त ईरान जी नाकाबंदी ख़तम करे कुझु मुजमित असासा बहाल कया विया आहिनि। पाकिस्तान ऐं कतर जी चाकड़ीअ में लबनान जंग जे ख़ात्मे जे लाइ बि अहम अगभराई थी आहे। तेल जी बरामद तां पाबंदियूं हटायूं वियूं आहिनि। ईरान जी नए सिर तामीर ऐं तरक़ीअ जो नओं मनसूबो बि शुरू कयो वियो आहे।

अमेरिकी सदर जी ईरान के ॿीहर धमकी, लबनान में ईरानी प्रॉक्सीज के छिकताण वधाइण खां रोकण जो मुतालबो। डोनाल्ड ट्रंप चवे तो ईरान सदस ॻाल्हि न मञी त खेस ॿीहर निशानो बणायो वेंदो। आबदा हरमुस ते टोल टैक्स अमेरिका खे वठणु घुर्जे। आबदा हरमुस जो कंट्रोल अमेरिका पाण वटि बि रखी सघे थो। आबदा हरमुस ईरान जी ख़ुदमुख़्तियारी जी अलामत आहे। आबदा हरमुस बाबति हतमी फ़ैसिलो तहरान कंदो। ईरानी पार्लियामेंट जे क़ौमी सलामती बाबति सलाहकार इब्राहिम अज़ीज़ी ट्रंप खे मुख़ातिब थींदे चयो आहे त अव्हां धमकियूं ॾींदा आहियो, असां कार्रवाई कंदा आहियूं। आबदा हरमुस अव्हांजो जुआ खानो न आहे, नई जदीद दौर जे सामूरी धाड़ेलनि जो इलाइक़ो आहे। आबदा हरमुस बाबति फ़ैसिले जो इख़्तियार ईरानी अवाम ऐं संदसि बहादुर फ़ौज वटि आहे, ॿियो केरु नथो करे सघे। برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر عہدے تاں مستعفی ٹین ڈاؤن اسٹریٹ تے میڈیا سا ڳالھائیندے کیئر سٹارمر مستعفی تھیڻ جو اعلان کيو۔ کیئر سٹارمر چيو تہ ان ملڪي معيشت کي ٻن سالن دوران مضبوط ڪيو، پارٽي خواهش تي عہدو ڇڏي رهيو آهيان، ايندڙ وزير اعظم سان ڀرپور سهڪار ڪندس۔ इरसा में सिंध जो नुमाइंदो शफ़क़त हुसैन वधो बीमार हुअण सबब कारवावार हलाइण खां लाचार। इरसा सिंध जी गैरहाज़िरी जो फ़ाइदो वठंदे मनपसंद फ़ैसिला करण लॻी। आपाशी खाते इरसा जे लाइ मुतबादिल प्लान न जोड़ियो। सूबे में पाणीअ जो बहरान संगीन थी वियो। ज़रियनि मूजिबि इरसा समूरनि गॾजाणियुनि जा नोटिस ॾिना। सिंध मां केर बि इजलासनि में शरीक न थियो। पाणी जी सख़्त खोट दौरान इरसा में सिंध जे गैरमौजूदगीअ सूबे खे वधीक नुक़सान पहुचायो। इरसा इजलास में सिंध जो आवाज़ न हुजण सबब पाणी विच बाबति मनपसंद फ़ैसिला कया विया। सिंध असेंबलीअ जे बजट इजलास में मेंबर्स जूं पाणी जी खोट जूं दाहूं। सूबाई सतह ते मोटरवे अथॉरिटी क़ाइम करण जी बि तजवीज़। सिंध में बजट ते ॻाल्हाईंदे सूबा वज़ीर जाम विक्रामला धारे जो चयो त सिंध में पाणी जी सख़्त खोट आहे। पंजाब में चनाब दरिया ते नओं केनाल ठाहिण जी ॻाल्हि थी रही आहे। सिंध हुकूमत दरिया ते नवनि मनसूबनि ते मज़ाहमत कंदी। नेशनल हाईवे ऐं मोटरवे अथॉरिटी क़ाइम करे सिंध जे रोड्स ते कम करे सघे थो। सूबा वज़ीर रियाज़ शाह शिराज़ी चयो त सूबे में पाणीअ जो बहरान संगीन थी वियो आहे। फसल पोखण जे लाइ पाणी ॾिनो वञे। फयाज़ भुट चयो त मुल्क खे गैस ऐं बिजली ॾींदड़ सिंध में ई गैस ऐं बिजली अणलभ आहे।

सिंध में ज़रई पाणी जी खोट ख़त्म न थी, मुख़्तलिफ़ शहरनि में फसल पाणी न मिलण सबबि सड़न लॻा। वाराह में SUP जो पाणी जी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज, रैली कढी धरणो बीहायो वियो। मीरपुर भठोरो में अवामी तहरीक जो पाणी जी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज, इलाइक़े जे शाखनि ऐं वाहन में पाणी छॾ ऐं फसल बचाइण जो मुतालबो। सिंध हाईकोर्ट कराची SPSC में गॾियल चटाभेटी 2024 जे पेपर्स जो समूरो रिकॉर्ड 30 जून ते तलब करे वरितो। AG सिंध चयो त केस खे कानून मूजिब हलायो वञे। अदालत पब्लिक सर्विस कमीशन जे कंट्रोलर इम्तिहान खे तलब नथी करे सघे।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: जीए एफएम 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो जीए एफएम 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं। बेटा चेहरे के साथ वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: It's 4:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अगते वधाड़ में मदद करते दोस्त मुल्कन जो भी थोराए तो आया खास तौर ते कतरी क्यादत जो थोराए तो आया गालियन के कामयाब करण वारियन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जी कोशिशन ते भी संदस थोराए तो आया। फील्ड मार्शल जी कोशिश ए अजम सबब अग भराई थी है। नायब वज़ीर आज़म ए घरू वज़ीर जो भी किरदार सारा जोगो है।

ईरानी सरदार मसूद पेजवान जे सुभाणे पाकिस्तान जे दौरे ते अचण जा इम्कान। सिफारती ज़रिए मूजिब ईरानी सदर पाकिस्तान जे मुख़्तसर दौरे ते सुभाणे इस्लामाबाद पहुचंदो। मसूद पेजवान पाकिस्तान जी सियासी अस्करी क़यादत सां मुलाक़ातूं कंदो। पाकिस्तान जा सूरत हाल में मस्बत किरदार ते थोरा बि मञींदो। अमरीका ऐं ईरान विच में हतमी मुआदे लाइ 60 ॾींहनि जो रोडमैप मंज़ूर। लबनान में जंगबंदी ते अमल दरामद लाइ डी कन्फ्लिक्शन सेल ठाहिण ते बि इतफ़ाक़। अमरीका ऐं ईरान विच में इस्लामाबाद मफ़ावती यादाशनामे तहत ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जारी रखण जो फ़ैसिलो। निगरानी लाइ आला सतही कमेटी क़ाइम। स्विट्ज़रलैंड में थियल ईरान अमरीका ॻाल्हियुनि जो गडियल पधरनामो जारी। आबना हरमुस में जहाज़नि जी अच वञ बहाल रखण ऐं ग़लति फ़हमी खां बचण लाइ हॉट लाइन क़ाइम। एटमी प्रोग्राम लबनान ऐं सालिस मुल्क शामिल हूंदा। स्विट्ज़रलैंड रोड मैप ते इतफ़ाक़ खे सुठो सवण करार ॾेई छॾियो। अमरीका ऐं ईरान विच में हतमी मुआदे लाइ 60 ॾींहनि जो रोडमैप मंज़ूर थियण बाद टेक्निकल सतह ते ॻाल्हियूं जारी। ईरान मीडिया मूजिब ॿिन्ही मुल्कनि विच में टेक्निकल सतह ते ॻाल्हियूं जारी रहंदियूं। ॿिन्ही मुल्कनि जा आला सतही वफ़द ॻाल्हियुनि जो हिसो हूंदा। ईरान जो आला सतही वफ़द रोडमैप ते इतफ़ाक़ बाद स्विट्ज़रलैंड खां वापसि ॾे रवानो। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास अराग़ची चयो आहे त ईरान जी नाकाबंदी ख़तम करे कुझु मुंजमिद असासा जारी कया विया आहिनि। पाकिस्तान ऐं कतर जी टियाकड़ी में लबनान जंग जे ख़ात्मे लाइ बि अहम अगभराई थी आहे। तेल जी बरामद तां पाबंदियूं हटायूं वयूं आहिनि। ईरान जे नए सिर तामीर ऐं तरक़ीअ जो नओं मनसूबो बि शुरू कयो वियो आहे। अमरीकी सदर जी ईरान खे ॿीहर धमकी। लबनान में

छिकताण वधाइण खां रोकण जो मुतालबो। डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ईरान सदस्य ॻाल्हि न मञी त खेसि ॿीहर निशानो बणाए वेंदो। आबनाए हुर्मुस ते टोल टैक्स अमरीका खे वठण घुर्जे। आबनाए हुर्मुस जो कंट्रोल अमरीका पिण वटि बि रखी सघे थो। आबनाए हुर्मुस ईरान जी ख़ुदमुख़्तियारी जी अलामत आहे। आबनाए हुर्मुस बाबति हतमी फ़ैसिलो तेहरान कंदो। ईरानी पार्लियामेंट जी क़ौमी सलामती बाबति सलाहकार इब्राहिम अज़ीज़ी ट्रम्प खे मुख़ातिब थींदे चयो आहे त अवां धमकियूं ॾींदा आहियो, असां कार्रवाई कंदा आहियूं। आबनाए हुर्मुस अवां जो नाहे नई जदीद दौर जी सामूंडी धाड़ेलनि जो इलाइक़ो आहे। आबनाए हुर्मुस बाबति फ़ैसिले जो इख़्तियार ईरानी अवाम ऐं संदसि बहादुर फ़ौज वटि आहे। ॿियो केर नथो करे सघे। برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر عہدے تا مستعفی۔ ٹین ڈاؤن سیٹ تے میڈیا سے گلائیندے کیئر سٹارمر مستعفی تھن جو اعلان کیو۔ کیئر سٹارمر چیو تا ہن ملکی معیشت کے بن سالن دوران مضبوط کیو۔ پارٹی جی خواہش تے عہدو چھڑے رہے ہاں، ایندڑ وزیر اعظم سا بھرپور سہکار کندس۔ ارسام حسن جو نمائندو شفقت حسین ودو بیمار ہون سبب कारोबार हलाइण खां लाचार। इरसा हसन जी गैर हाज़िरीअ जो फ़ाइदो वठंदे मनपसंद फ़ैसिला करण लॻी। आबपाशी खाते इरसा लाइ मुतबादिल प्लान न जोड़ियो। सूबे में पाणी जो बोहरान संगीन थी वियो। ज़रियनि मूजिब इरसा समूरियुनि गॾजणियुनि जा नोटिस ॾिना। सिंध मां केर बि इजलासनि में शरीक न थियो। पाणीअ जी सख़्त खोट दौरान इरसा में सिंध जी गैर मौजूदगी सूबे खे वधीक नुक़सान पहुचायो। इरसा इजलास में सिंध जो आवाज़ न हुजण सबब पाणी विर्च बाबति मनपसंद फ़ैसिला कया विया। सिंध असेंबली जे बजट इजलास में मेंबर जूं पाणी खोट चूंदाहूं। सूबाई सतह ते मोटरवे अथॉरिटी क़ाइम करण जी बि तजवीज़। सिंध जी बजट ते ॻाल्हाईंदे सूबाई वज़ीर जाम विक्रमुल्ला धारे जो चयो त सिंध में पाणीअ जी सख़्त खोट आहे। पंजाब में चनाब दरिया ते नई केनाल ठाहिण जी ॻाल्हि थी रही आहे। सिंध हुकूमत दरिया ते नवनि मनसूबनि ते मज़ामत कंदी। नेशनल हाईवे ऐं मोटरवे अथॉरिटी क़ाइम करे सिंध जे रोड्स ते कम करे सघे थो। सूबाई वज़ीर रियाज़ शाह शिराज़ी चयो त सूबे में पाणी बोहरान संगीन थी वियो आहे। फसल पोखण लाइ पाणी ॾिनो वञे। फयाज़पुर चयो त मुल्क खे गैस ऐं बिजली ॾींदड़ सिंध में ई गैस ऐं बिजली अणलभ आहे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: It's 5:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
4: ताडो सुठो
3: जीए FM 88 नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
5: सुनते रहो जीए FM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

छा अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज़। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: अमरीका ऐं ईरान विच में हतमी मुआदे लाइ 60 ॾींहनि जो रोड मैप मंज़ूर। लबनान में जंग बंदीअ ते अमल दरामद लाइ ॿिन्ही मुल्कनि विच में हतमी मुआदे लाइ 60 ॾींहनि जो रोड मैप मंज़ूर थियण बाद टेक्निकल सतह ते ॻाल्हियूं जारी। ॿिन्ही मुल्कनि जा आला सतही वफ़द ॻाल्हियुनि में शामिल। स्विट्ज़रलैंड में थियल ईरान अमरीका ॻाल्हियुनि जो गॾियल पधरनामे मूजिब इस्लामाबाद मफ़ामती याददाश्त नामे तहत ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जारी रखण जो फ़ैसिलो। निगरानी लाइ आला सतही कमेटी बि क़ाइमु कई वई। आबनाए हुर्मज़ में जहाज़नि जी अचवञ बहाल रखण ऐं ग़लति फ़हमीअ खां बचण लाइ हॉट लाइन क़ाइमु। एटमी प्रोग्राम पाबंदियुनि ऐं तकरारुनि जे हल लाइ धारधार वर्किंग ग्रुप बि क़ाइमु। परॾेही खाते चयो आहे त डी कंफ्लिक्शन सेल में लबनान ऐं टियाकड़ी कंदड़ मुल्क शामिल हूंदा। स्विट्ज़रलैंड रोड मैप ते तफ़ाक़ खे सुठो सवण करार ॾेई छॾियो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ स्विट्ज़रलैंड जे कामयाब दौरे बाद वापसि ॾे रवानो। वज़ीर आज़म चयो आहे त अलहमदुल्ला इस्लामाबाद मफ़ामती याददाश्त नामे तहत अमरीका ऐं ईरान विच में थियल पहिरीं आला सतही गॾिजाणीअ में मुस्बत अकबराई थी आहे। हतमी मुआदे लाइ 60 ॾींहनि जी रोड मैप ते इतफ़ाक़ थियो। ॻाल्हियुनि दौरान आला सतही कमेटीअ ते बि इतफ़ाक़ थियो आहे, जेका सियासी निगरानीअ सां गॾु टेक्निकल ॻाल्हियुनि लाइ रस्तो हमवार ॻाल्हियुनि ते सदन थोरायतो आहियां। तारीख़ी अमल खे अॻिते वधाइण में मदद करण ते दोस्त मुल्कनि जो बि थोरायतो आहियां। ख़ासि तौर ते
1: Work today is broken. We're all working in too many disconnected apps, and it's killing team productivity. But for the first
0: शन आज़म सबब अकबराई थी आहे।

ईरानी वफद की वॉकआउट वारी धमकी बावजूद गालिन में वड़ी अग भराई थी। गुजरियल 24 कलाकन सुठा रहा। लबनान में अमुन रो है। आमना हुरमज भी खुलल है। अमरीकी नायब सदर जे डी वेंस आलमी तवानाई एजेंसी जा इंस्पेक्टर ईरान वेंदा तहरान से थियल मुआदे की निगरानी कंदा। इसराइल के दिफा वाले हक के तस्लीम क्यों था पर लबनान की खुदमुख्तियारी जो भी तहफुज चाहूं था। गालिन दौरान अमरीका पारा तय कल चार ही हदफ हासिल कया।

ईरानी सदर मसूद पेशिकियान सुभाणे पाकिस्तान जे दौरे ते इस्लामाबाद पहुचंदो। संदसि साथीअ लाइ इस्लामाबाद खे पाकिस्तान ऐं ईरान जे झंडनि सां सिंगारियो वियो। सफारती ज़रियनि मूजिबि ईरानी सदर मुख़्तसर दौरे दौरान पाकिस्तान जी सियासी ऐं अस्करी क़यादत सां मुलाक़ातूं कंदो। पाकिस्तान जा सूरत हाल में मुस्बत किरदार ते बि थोरा मञी थो।

ईरानी परदेही वज़ीर अब्बास राघची चयो आहे त ईरान जी नाकाबंदी ख़तम करे कुझु मंजमद असासा जारी कया विया आहिनि। पाकिस्तान ऐं कतर जी ट्रैकड़ीअ में लबनान जंग जे ख़ात्मे लाइ अहम अॻुवाई थी आहे। तेल जी बरामद तां पाबंदियूं हटायूं वियूं आहिनि। ईरान जी नए सिर तामीर ऐं तरक़ीअ जो नओं मनसूबो बि शुरू कयो वियो आहे।

0: आबनाए हुरमज ईरान की खुदमुख्तियारी की अलामत है। आबनाए हुरमज बाबत हतमी फैसलो तहरान कंदो। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती बाबत सलाहकार इब्राहिम अजीजी ट्रंप के मुखातिब थींदे तवां धमकियूं डींदा आयो असां कार्रवाई कंदा आहियूं। आबनाए हुरमज अवां जो नाहे नई जदीद दौर की सामूंडी धाड़ेलन जो इलाको है। आबनाए हुरमज बाबत फैसले जो अख्तियार ईरानी अवाम ए सनस बहादुर फौज वट है बो केर नथो करे सके। सिंध असेंबली में एम क्यू मेंबर फरहान अंसारी की एमपीएस के बोरी बंद लाशन की धमकी। पीपुल्स पार्टी मेंबर्स जो एहतजाज घरू वजीर पारा जांच कराने जो ऐलान। सिंध असेंबली में गालाइंदे एम क्यू एम एमपीए फरहान अंसारी रुगो बोरी बंद लाशन जो जिक्र कंदा आयो। कदें बोरी डिठी अथो बोरी डिसी सकंदो अवां बोरी सही भी न सकंदा। घरू वजीर जालंजा एमपीए अणसिधी तरह ऐवान के बोरी बंद लाशन की धमकी डिनी। यह खतरनाक गाल है मां जांच जो हुकुम दे रो आया। कमेटी की अवां सरबराही कयो। स्पीकर अवेस कादर शाह चयो मां इजाजत दियां तो तवां जांच कराए सको था। लफ्ज इंतहाई गलत आहिन। हिस्सा में सिंध जो नुमाइंदो शफकत हुसैन वधो बीमार होवण सबब कारवार हलाइण खां लाचार। इरसा सिंध जे गैर हाजिरी जो फायदो वठंदे मनपसंद फैसला करण लगी। आपाशी खाते इरसा लाइ मुतबादल प्लान न जोड़ियो। सूबे में पानी जो बोहरान संगीन थी वयो। ज़रियन मूजिब इरसा समूरन गडजाणियुनि जा नोटिस डि॒ना। सिंध मां केर बि इजलासनि में शरीक न थियो। पाणी जी सख़्त खोट दौरान इरसा में सिंध जी गैर मौजूदगी सूबे खे वधीक नुक़सान पहुचायो। इरसा इजलास में सिंध जो आवाज़ न हुजण सबबि पाणी विर्छ बाबति मनपसंद फ़ैसला कया। पिनकी कराचीअ जी हुजे या लाहौर जी कानून खां न बचंदी। को हीरोइन जे कारोबार करे या हीरन जो न पिनकी बचंदी न पिनको। कौमी असेंबली में ॻाल्हाईंदे घरू मामलनि बाबति मुमलकती वज़ीर तलाल चौधरी चयो त पाकिस्तानी पासपोर्ट जी इज़त दुनिया में वधाई आहे। सऊदी अरब 5000 फ़क़ीर पाकिस्तान मोटाया आहिनि। दुबई वारनि खे बि साॻियो मसइलो आहे। अंग अखर ॾिना विया आहिनि। दहशतगर्दी ख़तम करे ई मुल्की मैशत बहितर करे सघजे थी। दुनिया में किथे भी सियासी मुखालफन के सजाऊं नथी डिनी वन। 35 हफ्तन का पीटीआई बानी से मुलाकातू बंद आहिन। वजीर आजम वट मुलाकात जो अख्तियार ना है। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर जो कौमी असेंबली में खिताब। कानून वाले वजीर सेनेटर आजम नजीर तार जवाब डींदे आईन की गाल था कयो। हाईकोर्ट जजेस की मुकररी लाइ आयासीं पर अवां कमेटी में न आया। अदालती मामले में हुकूमत कुछ नथी करे सघे। अवां खे आला अदलिया में वञण घुर्जे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: It's 6:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by International Pakistan.
3: सिंध के माथे का झूमर
4: DFM 88 नेटवर्क
5: सिंध की आवाज
4: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माटली और माल GFM।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

सिल्क की हो तो आवाज भी सिल्क की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिल्क की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: हर पहर
1: अजरक के रंगों से रंगी,
0: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
0: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: लश्कर।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: एंगल में बात करते हैं,
3: बेशरम लोग पंच कर रहे हैं।
2: तो बात बल्दिया फैक्ट्री के लिए पहले करते थे वो सही थी, या जो कल इन्होंने बकवास की वो ठीक थी? मैंने कोई गाली नहीं बकी।
3: अब अपने अल्फाज वापस ले ना, आपने बेशरम
2: में कौन सा अल्फाज वापस ले लूं?
3: ठीक है
2: सर, बेशरम
3: वो कहे ना कि मैं वापस ले लेता हूँ।
4: माफी नहीं मांगेंगे हम, बात नहीं करेंगे, इसको माफी मांगनी चाहिए।
5: टोटल स्पीच को आप एक्सपेंस करवाए।
2: मैंने कौन सी बात की? पार्लिमानी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ब्राइड करें जो दिल करें। एमपीएम एक थी, एमपीएम एक है और एमपीएम एक रहेगी।
6: सिंध असेंबली में एमक्यूएम मेंबर फरहान अंसारी लाश अंजीदी डे वे हुकूमती अपोजिशन मेंबर्स हथे पेजी वया। घरू वजीर पारा मुतहदा मेंबर्स की धमकियों वाले मामले की जांच करण जो ऐलान। सिंध असेंबली में गालंदे एमक्यूएम एमपीए फरहान अंसारी चो तो रुगो बोरी बंद लाशन जो जिक्र कंदा आयो। कने बोरी डिठी अथो? बोरी डिसी सकंदो? अवां बोरी सही भी न सकंदा। घरू वजीर ज़ियालन जा चयो त एमपीए अणसिधी तरह ऐवान के बोरी बंद लाशन की धमकी डिनी है। हीअ खतरनाक ॻाल्हि आहे, मां जांच जो हुकुम ॾेई रहियो आहियां। कमेटीअ जी अवां सरबराही कयो। स्पीकर अवेस कादर शाह चयो त मां इजाज़त ॾियां थो, अवां जांच कराए सघो था। लफ़्ज़ इंतिहाई ग़लति आहिनि। धमकियुनि वारे मामले ते हुकूमत ऐं अपोज़िशन मेंबर्स हथे पइजी विया। हिक ॿिए खे धिका।

0: दर।
1: सिंध के माथे का झूमर
2: DFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM ETH नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
1: वगुनी गरजो पांजे नढड़े अदे अली असगर जो उठी तरस सजाए वगुनी गरजो पांजे नढड़े अदे अली असगर जो उठी तरस सजाए तुझे उठड़े अदाऊं करे खैर धनी ये दुआ थी घुरा पांजा हथड़ा खनी तुझे उठड़े अदाऊं करे खैर धनी ये दुआ थी घुरा पांजा हथड़ा खनी शल तोखे बिडे रब उम्र घनी जोरो जल्द पहुंच।

स्विट्जरलैंड में अमरीका ईरान ॻाल्हियुनि बाद वॉशिंगटन जो तेहरान खे वॾो रिलीफ। अमरीका ईरान खे तेल जे विकिरे ऐं ख़रीद करण जे 60 ॾींहनि लाइ इजाज़त ॾेई छॾी। अमरीकी नाणे खाते पारां ईरान खे लाइसेंस जारी। अमरीकी नाणे खाते मूजिब ईरान 21 अगस्त ताईं पेट्रोल ऐं पेट्रोकेमिकल शयूं विकिरे करे सघंदो। तेहरान पेट्रोलियम वारियूं शयूं अमरीका खे बि विकिरो करे सघंदो।

0: अमरीका ऐं ईरान विच में हतमी मुआहिदे लाइ 60 ॾींहनि जो रोडमैप मंज़ूर। लिबनान में जंगबंदी ते अमल दरामद लाइ डी कंफ्लेक्शन सेल ठाहिण ते बि तफ़ाक। ॿिन्ही मुल्कनि विच में हतमी मुआहिदे लाइ 60 ॾींहनि जो रोडमैप मंज़ूर थियण बाद टेक्निकल सतह ते ॻाल्हियूं जारी। ॿिन्ही मुल्कनि जा आला सतही वफ़द ॻाल्हियुनि में शामिल। स्विट्ज़रलैंड में थियल ईरान अमरीका ॻाल्हियुनि जो गडि॒यल पधरनामे मूजिब इस्लामाबाद मफ़ामती यादाश्त नामे तहत ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जारी रखण जो फ़ैसिलो। निगरानी लाइ आला सतही कमेटी बि क़ाइम कई वई। अबना हरमुस में जहाज़नि जी अच वञ बहाल रखण ऐं ग़लति फ़हमी खां बचण लाइ हॉटलाइन क़ाइम। एटमी प्रोग्राम पाबंदियुनि ऐं तकरारनि जे हल लाइ धारधार वर्किंग ग्रुप्स क़ाइम। परडे॒ही खाते चयो आहे त डी कंफ्लेक्शन सेल में लबनान ऐं 40 मुल्क शामिल हूंदा। स्विट्ज़रलैंड रोड मैप ते इतफ़ाक़ खे सुठो सवण करार ॾेई छॾियो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ स्विट्ज़रलैंड जे कामयाब दौरे बाद वापसि ॾे रवानो। वज़ीर आज़म चयो आहे त अलहमदिल्ला इस्लामाबाद मफ़ामती यादाश्त तहत अमरीका ऐं ईरान विच में थियल पहिरीं आला सतही गॾिजाणी में मस्बत मुआहिदे लाइ रोडमैप ते इतफ़ाक़ थियो आहे। ॻाल्हियुनि दौरान आला सतही कमेटी ते बि इतफ़ाक़ थियो आहे, जेका सियासी निगरानी सां गॾु टेक्निकल ॻाल्हियुनि लाइ रस्तो हमवार कंदी। अमरीकी ऐं ईरानी क़यादत जी तामीरी ॻाल्हियुनि ते संदन थोरायतो आहे खे अॻिते वधाइण ते दोस्त मुल्कनि जो बि थोरायतो आहियां। ख़ासि तौर ते कतरी क़यादत जो थोरायतो आहियां। ॻाल्हियुनि खे कामयाब करण वारनि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जी कोशिश ते बि संदसि थोरायतो आहियां। फील्ड मार्शल जी कोशिश अॻु भराई नायब वज़ीर आज़म ऐं घरू वज़ीर जो बि किरदार सारा जोॻो रहियो। ईरानी अफ़वाह जी वॉकआउट वारी धमकी बावजूद ॻाल्हियुनि में वॾी अॻभराई थी। गुज़िरियल 24 कलाक सुठा रहिया आहिनि। लबनान में अमन रहियो आहे। आबना हरमुस बि खुलियल आहे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस चयो आहे त आलमी तवानाई एजेंसी जा इंस्पेक्टर ईरान वेंदा ऐं तेहरान सां थियल मुआहिदे जी निगरानी कंदा। इसराइल जे दिफ़ा वारे हक़ खे तस्लीम कयूं था, पर लबनान जी ख़ुदमुख़्तारी जो बि तहफ़ुज़ चाहियूं था। ॻाल्हियुनि दौरान अमरीका पारां तय कयल 4 हदफ़ हासिल कया आहिनि। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान सुभाणे पाकिस्तान जे दौरे ते इस्लामाबाद पहुचंदो। संदसि आजियां लाइ इस्लामाबाद खे पाकिस्तान ऐं ईरान जे झंडनि सां सिंगारियो वियो। सिफारती ज़रियनि मूजिबि ईरानी सदर मुख़्तसर दौरे दौरान पाकिस्तान जी सियासी ऐं अस्करी क़यादत सां मुलाक़ातूं कंदो। पाकिस्तान जा सूरतहाल में मस्बत किरदार ते थोरा बि मञंदो।
1: एनजीओ पे बात करते हैं, बेशरम लोग
2: पंच कर रहे हैं।
1: तो बात बल्दिया फैक्ट्री के लिए पहले करते थे वो सही थी, या जो कल इन्होंने बकवास की वो ठीक थी? मैंने कोई गाली नहीं बकी।
2: अब अपने अल्फाज वापस ले ना, आपने
1: बेशरम में कौन सा अल्फाज वापस ले लूं?
2: हाँ ठीक है
1: सर, बेशरम
2: वो कहे ना कि मैं वापस ले लेता हूँ।
3: माफी नहीं मांगेंगे हम, बात नहीं करेंगे, इसको माफी मांगनी चाहिए।
4: टोटल स्पीच को आप एक्सपेंस करवाएं।
1: ये मैंने कौन सी बात की? पार्लिमानी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ब्राइड करें जो दिल करें। आप एमपीओ में एक थी, एमपीओ में एक है और एमपीओ में एक रहेगी।
0: सिंध असेंबली में मुतहदा मेंबर फरहान अंसारी जे एमपीएस खे बोरी बंद लाशुनि जी धमकी। जुमिलनि जी ॾे वठि खां पोइ हुकूमती ऐं अपोज़िशन मेंबर्स हथे पइजी विया। घरू वज़ीर पारां मुतहदा मेंबर्स जे धमकियुनि वारे मामले जी जांच कराइण जो ऐलान। सिंध असेंबली में ॻाल्हाईंदे एमपीए फरहान अंसारी चयो त रुगो बोरी बंद लाशुनि जो ज़िक्र कंदा आहियो, कॾहिं बोरी ॾिठी अथव? छा बोरी ॾिसी सघंदव? अवां बोरी सही बि न सघंदा। एस कादिर शाह चयो त मां इजाज़त ॾियां थो, अवां जांच कराए सघो था। लफ़्ज़ इंतिहाई ग़लति आहिनि। धमकियुनि वारे मामले ते हुकूमती ऐं अपोज़िशन मेंबर्स हथे पइजी विया। हिक ॿिए खे धिका। اسلام سن جو نمائندو شفقت حسین وتو بیمار ہونے سبب کاروبار ہلائن کا لاچار ارسا سن کی غیر حاضری جو فائدہ وٹھندے من پسند فیصلہ کرن لگی آبپاشی کھاتے ارسا لائے متبادل پلان نہ جوڑو صوبے میں پانی جو بحران سنگین تھی ویو ذریعے موجب ارسا سمورین گڈجانین جو نوٹس ڈنا سندھ میں کیر بھی اجلاس میں شریک نہ تھو پانی کی سخت کوٹ دوران ارسا میں سندھ کی غیر موجودگی صوبے کے ودھیک نقصان پہنچایا ارسا اجلاس میں سندھ جو آواز نہ ہوجن سبب پانی ورچ بابت من پسند فیصلہ کیا ویا
5: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
6: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
7: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے
6: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अब बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज। GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
1: उठी तरस तड़ाई वगुनी गरजो उठी तरस तड़ाई वगुनी गरजो पांजे नढड़े अदे अली असग उठी तरस तड़ाई वगुजो पांजे नढड़े अदे अली असगर जो उठी तरस तड़ाई तुझे उठड़े अदान कर खैर धनी ये दुआ थी घुरा पांजा हथड़ा खणी तुझे उठड़े अदान कर खैर धनी ये दुआ थी घुरा पांजा हथड़ा खणी शल तोखे बिडे रब उम्र घणी जोरो जल्द पहुंचाए जा दिल बरजो ओठी तरस सजाए वगोनी गरजो ओठी तरस सजाए वगोनी गरजो पांजे नढड़े अदे अली असगर जो ओठी तरस सजाए वन्नी पहुंचंदे जाते वन्नो थई मुझी कैल सदा के मन्नो थई वन्नी पहुंचंदे जाते वन्नो थई मुझी कै मन्नो

लग जो ओठी तरस सजाए वगोनी गरजो ओठी तरस सजाए वगोनी गरजो पांजे नढड़े अते अली असगर जो।

0: है।
1: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: अमेरिका ईरान विच में हतमी मुआदे लाए 60 ॾींहनि जो रोडमेप मंजूर। लबनान में जंगबंदी ते अमल दरामद लाए डी कंफ्लिक्शन सेल ठाहिण ते इतफ़ाक। ॿिन्ही मुल्कनि विच में हतमी मुआदे लाइ 60 ॾींहं जो रोडमेप मंज़ूर थियण बाद टेक्निकल सतह ते ॻाल्हियूं जारी। ॿिन्ही मुल्कनि जा आला सतही वफ़द ॻाल्हियुनि में शामिल। स्विट्ज़रलैंड में थियल ईरान अमरीका ॻाल्हियुनि जो गॾियल पधरनामे मूजिबि इस्लामाबाद मफ़ामती यादाश्तनामे तहत ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जारी रखण जो फ़ैसिलो। निगरानी लाइ आला सतही कमेटी बि क़ाइम कई वई। आबनाए हुरमज़ में जहाज़नि जी अचवञ बहाल रखण ऐं ग़लति फ़हमीअ खां बचण लाइ हॉटलाइन क़ाइम। एटमी प्रोग्राम पाबंदियुनि ऐं तकरारुनि जे हल लाइ धार वर्किंग ग्रुप्स बि क़ाइम। परडे॒ही खाते चयो आहे त डी कंफ्लिक्शन सेल में लबनान ऐं ट्राकड़ी कंदड़ मुल्क शामिल हूंदा। स्विट्ज़रलैंड रोड मैप ते इतफ़ाक़ खे सुठो सवण करार ॾेई छॾियो।
3: ईरान मथां तेल विकिरे जी पाबंदी आरज़ी तौर हटाए छॾी। अमरीकी नाणे खाते पारां ईरान खे 60 ॾींहनि लाइ तेल विकिरे या ख़रीद करण लाइ लाइसेंस जारी। अमरीकी नाणे खाते मूजिब ईरान 21 ऑगस्ट ताईं पेट्रोल ऐं पेट्रोकेमिकल विकिरो करे सघंदो, तेहरान खे बि विकिरो करे सघंदो।
2: वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ स्विट्ज़रलैंड जे कामयाब दौरे बाद वापसि ॾे रवानो। वज़ीर आज़म चयो आहे त अलहमदुल्ला इस्लामाबाद मफ़ामती यादाश्त तहत अमरीका ऐं ईरान विच में थियल पहिरीं आला सतही गॾिजाणीअ में मुसिबत अगभराई थी आहे। हतमी मुआदे लाइ 60 ॾींहं जी रोडमेप ते इतफ़ाक़ थियो। ॻाल्हियुनि दौरान आला सतही कमेटीअ ते बि इतफ़ाक़ थियो आहे, जेका सियासी निगरानी सां गॾु टेक्निकल ॻाल्हियुनि लाइ रस्तो हमवार कंदी। अमरीकी ऐं ईरानी क़यादत जी तामीरी ॻाल्हियुनि ते सदन थोरायतो आहियां। तारीख़ी अमल खे अॻिते वधाइण में मदद करण ते दोस्त मुल्कनि जो बि थोरायतो आहियां, ख़ासि तौर ते क़तरी क़यादत जो बि। ॻाल्हियुनि खे कामयाब करण वारनि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जी कोशिशुनि ते बि संदसि थोरो मञा थो। फील्ड मार्शल जी कोशिश हराइती आहे। नायब वज़ीर आज़म ऐं घरू वज़ीर जो बि किरदारु साराह जो घुरियो।
3: ईरानी सदर लाइ सुभाणे हिकु वफ़द सां गॾु इस्लामाबाद पहुचंदो ऐं पाकिस्तान जी सियासी तोड़ी अस्करी क़यादत सां मुलाक़ात कंदो। मुलाक़ातनि दौरान पाक ईरान बितरफ़नि लाॻापनि जो जाइज़ो वरितो वेंदो। ईरानी सदर मौजूदा सूरतयाल में मस्बत किरदार ते पाकिस्तान जा थोरा मञींदो।
2: ईरानी वफ़द जी वॉकआउट वारी धमकी बावजूद ॻाल्हियुनि में वॾी अगभराई थी। गुज़िरियल 24 कलाक सुठा रहिया आहिनि। लबनान में अमुन रहियो आहे। आबनाए हुरमज़ बि खुलियल आहे। अमरीकी नायब सदर जे डी वेंट्स चयो आहे त आलमी तवानाई एजेंसीअ जा इंस्पेक्टर ईरान वेंदा ऐं तहरान सां थियल मुआदे जी निगरानी कंदा। इसराइल जी दिफ़ा वारे हक़ खे तस्लीम कयूं था, पर लबनान जी ख़ुदमुख़्तियारी जो बि तहफ़ुज़ चाहियूं था। ॻाल्हियुनि दौरान अमरीका पारां तय कयल 4 हदफ़ हासिल कया आहिनि।
4: एनजीओ पे बात करते हैं, बेशरम लोग
5: पंच कर रहे हैं।
4: तो बात बल्दिया फैक्ट्री के लिए पहले करते थे वो सही थी, या जो कल इन्होंने बकवास की वो ठीक थी? मैंने कोई गाली नहीं बकी।
5: अब अपने अल्फाज वापस ले ना, आपने बेशरम
4: में कौन सा अल्फाज वापस ले लूं?
5: हाँ ठीक है
4: सर, बेशरम
5: वो कहे ना कि मैं वापस ले लेता हूँ।
6: माफी नहीं मांगेंगे हम, बात नहीं करेंगे, इसको माफी मांगनी चाहिए।
7: टोटल स्पीच को आप एक्सपेंस करवाए।
4: मैंने कौन सी बात की? पालीमानी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है।

0: चुका है कि नहीं।
1: करें, ब्राइड करें, जो दिल करें आपका। एमपीओ में एक थी, एमपीओ में एक है और एमपीओ में एक रहेगी।
2: बोरी बंद लाशों की एक इनडायरेक्ट धमकी पूरे ऐवान को दी गई है, तो इस पर मैं इंक्वायरी का ऑर्डर कर रहा हूं।
3: सिंध असेंबली में मुतहदा मेंबर अंसारी जेएस के बोरी बंद लाशन की धमकी जुमरन के डेवट का पोए हुकूमती अपोजिशन मेंबर्स हथे पेजी वा। घरू वजीर पारा मुतहदा मेंबर्स की धमकियों वाले मामले की जांच कराने जो ऐलान। सिंध असेंबली में गलाइंदे एमक्यूएम एमपीए फरहान अंसारी रुगो बोरी बंद लाशन जो जिक्र कंदा हो, कदें बोरी डिठी अथव, छा बोरी डिसी सकंदो, अवां बोरी सही भी न सकंदा। करू वजीर ज़ियाल हसन अंजार चयो त एमपीए अणसिधी तरह ऐवान के बोरी बंद लाशन की धमकी डिनी है, ये खतरनाक गाल है। मां जांच जो हुक्म डेई रहियो आहियां, कमेटी जी अवां सरबराही कयो। स्पीकर अवेस कादिर शाह चयो त मां इजाज़त डियां थो, अवां जांच कराए सघो था। लफ्ज़ इंतहाई ग़लत आहिनि। धमकियुनि वारे मामले ते हुकूमती ऐं अपोजिशन मेंबर्स हथे पइजी विया, हिक ॿिए खे धिका।
4: पिनकी कराचीअ जी हुजे या लाहौर जी, कानून खां न बचंदी। को हीरोइन जे कारोबार करे या हीरन जो, न पिनकी बचंदी न को पिनको बचंदो। क़ौमी असेंबली में ॻाल्हाईंदे घरू मामलनि बाबति ममलकती वज़ीर तलाज चौधरी जो चवण हो त हुकूमत पाकिस्तानी पासपोर्ट जी इज़त दुनिया में वधाई आहे। सऊदी अरब 5000 फ़क़ीर पाकिस्तान मोटाया आहिनि, दुबई वारनि खे बि साॻियो ई मसलो आहे। अंग अखर ॾिना विया आहिनि, दहशतगर्दी ख़तम करे ई मुल्की मैशत बहितर करे सघिजे थी।
5: Work today is broken. We're all working in too many disconnected apps, and it's killing team productivity. But for the first time, there's a platform that fixes it by...
6: Aap sun rahe the GAFM Network par KTN News.

अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

रखे हो तो आवाज भी सिंकी है। GFM 88 नेटवर्क सिंकी आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: पहर, जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
2: उठी तरस सदाई वगुनी गरजो उठी तरस सदाई वगुनी गरजो पांडा दे अली असगर जो उठी तरस सदाई उठी तरस सदाई वगुनी गरजो पांडे नढड़े दे अली असगर जो उठी तरस सदाई तो जे उठड़े दान कर खैर धनी ये दुआ थी घुरा पांजा हथड़ा खनी तुझे उठड़े दान कर खैर धनी ये दुआ थी घुरा पांजा हथड़ा खनी शल तो खे बिडे रब उम्र घनी जोरो जल्द पहुंचाए जा दिल पर जो ओठी तरस सजाए वगोनी गर जो ओठी तरस सजाए वगोनी गर जो पांजे नढड़े अदे अली असगर जो ओठी तरस सजाए वन्नी पहुंचते जाते वन्नो थई मोजी कैल सदा के मन्नो थई वन्नी पहुंचते जाते।

गजो ओठी तरस सजाए वगुनी गरजो ओठी तरस सजाए वगुनी गरजो पांच नढड़े अते अली असगर जो ओठी तरस सजाए चयो ओठी पुत्र।

हर हर जो कोठी तरस सजाए भगोनी गर जो पांजे नंढड़े अदे अली असगर जो कोठी तरस सजाए चयो साईं सुगरा नाम अथम अबो पाक हुसैन इमाम अथम चयो साईं।

वर जो ओठी तरस सजाए भगोनी गर जो ओठी तरस सजाए भगोनी गर जो पांजे नंढड़े अते अली असगर जो ओठी तरस सजाए लफ्ज़ बच

लफ्ज़ बचड़िया जाओ जब बुधन लगो उठी बे अख्तियार तीरोन लगो खतनी दुस न्याणी आ चवण लगो खतनी दुस न्याणी आ चवण लगो मां गुलाम हुसैन जे दर जो ओठी तरस सजाए वगोनी घर जो पांजे नढड़े दे अली असगर जो ओठी तरस सजाए कयों हेडा कशां लाकन जे करे जग खलक्यो खुदा वंद जन जे करे कयों हेडा कशां

0: ओठी तरस तजाए वगुनी गर जो पांजे नढड़े दे अली असगर जो ओठी तरस तजाए।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।